0: निरोलागु मायुका लागि त सुनसरी गाउँपालिका योमी मस्तज जरुरी सूचना जुमो तेला खेमरिदे गरम ओबोतिरी जेउ तेला सुनो फुरी कतास ओचुदुरी जेउ आउ तेला को वन जंगल ल भे लागिने मस्तज संभावना पाए आउ ये गिनी प्राकृतिक सम्पदा र सक्षेप्त ज सक्षम नारे वातावरण मिलेने लख्यापा असर केने रि उमूल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्तज तानाले भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकेने सुनो नाथार नामेल भे लागिने सज जिमी गिनी लापरवाही सुनो चाउसो खेलगेमा दुख जिंगे को ठेल नेला की नाटी जन धने में खेपा छिपी ताऊ फोकाई
1: वन
0: जंगल सर मेरा आयुरी बानी एमएल एमए छेला दिवसो
1: पोतराले वन जंगल
0: पिकनिक वन भोज बाको छिन्नी मेले चाउसो सैदेखि खेनाए वन जंगल ओसो छाम्ने बानी पो चुरो विधि ओरे पनि कोबाजेङ
1: नान्थार नाम लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बनी हो अनुगमन दिने व्यवस्था
0: गेछो छामेला खोरेल चाउसी खोलिए हरिदे तरिम गाई गेजम हेकेलाई जु अब नजरे बनाए गेम एल गेजम हेकेमा लागे औलेम लायो
1: वन जङ्गल जुडिसी घेङबारी ल बाली नाली कुचिउला चिउली झ्याक्रा जस्तो चाउसो छिनी ने चाउसो सैलेकी खेले
0: वन जङ्गल मेलाकी गेमाइए मेला
1: सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालय खबर गिरिए
0: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा।